हुलिकाम्बा माता शरणं शरणं प्रपद्ये नारायणीं नत जनावनबद्ध दीक्षां नारायणस्य हृदयाम्बुजनित्ययोगां क्षीराब्धिदीपुतनयां स्मितचारुवक्त्रां हुलिगाम्बा जननि शरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमातरं श्रुतभुवं भुवनस्य राज्ञीं श्रीसप्तमातृपरिवारयुतां सुगण्यां शुम्भादिदैत्यहनने परशक्तिरूपां हुलिगाम्ब देवि शरणं शरणं प्रपद्ये कामेश्वरीं कनक